विवेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल।

सुके सर्वर पाल बंधाव लूण खेत हाथ वार कर आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुगद फिर चरण शीस कर कंपन लागे

पौड़ी वड़ी हूँ वड़ा अपार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेक ना जापन करतबा जिया दर्जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वास तेरा कर पड़ा।

0: पौड़े वडे वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सबक तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर माण महता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर देस है जत कहता नानक दासन दा तुद आ गए बिनवता
1: सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगले जगते चंग

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मातो एक ना माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तो बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार कहो सब तो बखाने ओ। दोहरा सगल दो

मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिस

कुर्मान तेरा सिर ऊपर फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया, तुझे ते निस्तार। बंदे बंदगी एक तियार, साहिब रोस धरो के प्यार। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का जियाए पावे मार। कह कबीर गुलाम कर का जियाए पावे मार। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तहर का द्वार। मात हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। सूरा सो पहचानिया, जो लरे दीन के हे तो। पुरजा पुरजा कट मर, कबहू ना छाड़े खेत। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त। सिर साहा पात साहु, निह चल चौर छत। डिठे सबे थाव, नहीं तुद जेहया। बदो हो पुरख विदाता, ता तू सोहया। वसदी सगने अपार, अनूप रामदास पुर। हर हां नानक कसमल जाए, नाये रामदास सार। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीत में आपना, तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का। जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी। नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डठे सच्चे पाते सा। माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु। सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठिया सोहिया। सब नादा सज्जन सच्चा पाते साहो, सिर साहांदा। जिस पास बैठिया सोहिया, सब नादा वेसाहो।
ਸਤਿ

सोरठ महला पंजवा एथ ओथ रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप रखे काट काट शब्द सुपाखे एथ ओथ रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप रखे काट काट शब्द सुपाखे गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सरन सास सास संभाली पूरन सबने था

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जाम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सोह कुर सोह।

0: तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तू दाखे लख करोड़, सच्चा सब तान सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच त्याइन सच, जो मर जमै सो कच्चन कच्च महला पहला।
1: वड्डी वडियाई जा वड्डा नाम, वड्डी वडियाई जा सचने आओ, वड्डी वडियाई जाने चलथाओ, वड्डी वडियाई जाने अलाओ, वड्डी वडियाई बुझे सब पाओ।

0: विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे प्रेजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्मादरा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रया विस्माद नानक बुझन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालियां काशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण तेबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सरप्यार कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब ते

ही सिद्ध ना होए। नचन कुदन मन का चाओ, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना।

दीपालोआ मंडला खरवन खंडावर पंडा अंडज जेरज उत्पुजा खानी से तजा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै समाले सबना जिन करतै करना किया चिंता पी करनीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहा।

लख तप उपर तीर्था सहजोग बेबान, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए।

गुर प्रसाद हर गुण साद गावो, गुण गावत मन होए बिगासा, सत गुर पूर जना की आसा।

0: प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना हुट सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सह समायो आयुनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास काले उचरै तें जगत उदारन पायो।
1: जगत उदारण नव निदान भगते पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारण सहज त्रोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड भागे ते मुक्ते पै सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो।
2: सेज सदा सह छावान संतोख सराय चो सदा सील सुना हो सो है गुरु शब समाचरो नाम टेक संगाद बो है अजूनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरै तू सहज सरोवर बास।

0: जिनको गुरसो प्रसन्न शब्द लग भव जल तार परचो परमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग
1: सतगुर खेमा तानिया जुग जोत समाने अनपौ निज नाम टेक जित भगत गाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने यो राज जोख गुरु रामदास तुम हूँ रस जाने।
2: जनक सोए जिन जानिया उन मन रख धरिया सत संतोख समाचार अपरा सर परिया कथ कथा।

0: सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत हो ऐ जियो। तारण तरण खेण मातर जा को दृष्ट तार, सब दो रिद विचार काम क्रोध खो ऐ जियो। जियन सबन दाता गम ज्ञान बिखे आता, एन सत्यान तावे पलक न सोवे जियो। जाको देख तद्रिद रजावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तोवे जियो। सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो।
1: तरम करम पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै। शब्द सार एक दिवदाई है, पुन जाने को तेरा अपार। निरपो निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है, परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार। जम को ना डंड काल गुरमत त्याई है, मन प्राणी मुगद विचार। एह निस जप धर्म करम पूरे।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अर सो कुरसो चटी तोद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा ज्यों पावे त्यों मोहे प्रतिपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल ज्यों पावे त्यों प्रतिपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई नानक तग ना टुटई जे

कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिक्का तेर धोती का खाई हाथ छुरी जग कसाई नील वस्त्र पैरों में प्रमाण में स्थान ले।

अंदर सबको वेखंदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़ियां आप ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेजने सिरै सिकंदे लाएंदा नदर वटनी जे कृष्ण ताना का कराएंदा धर्मंगण पेखना पाएंदा।